चखे लबानिक तक रलियल था स्तबम बिवीर में हर्ष पिंसन अवशीन वर्ष किस्मान अवशीन